अध्यात्म ज्योति 104.8 सिल्वर पैलेस विश्वसनीय सुरक्षित र भर पर्दो स्वदेशी श्रम र सिपबाट निर्मित आकर्षक डिजाइन का मिसावट रहित चांदी का एक्सक्लूसिव गहना लगायत भाड़ाहरू विवाह लगायत अन्य अवसर का लागि चाहिने चांदी का सामानहरू को लागि सिल्वर पैलेस न त ठगिने डर न मिसावट को चिंता हरेक सामान मा 100% शुद्धता को ग्यारेन्टी दिने एकमात्र सिल्वर पैलेस पसल नंबर 15 विशाल बजार न्यू रोड एवं प्युखा न्यू रोड होलसेल तथा रिटेल सेवा

कार्यक्रम समर्पण प्रत्येक शुक्रबार बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म सुमधुर रसमय भजन का साथ में अवश्य सुन्नुहोला केवल एफएम अध्यात्म ज्योति।

Parts. प्रत्येक शुक्रबार बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म सुमधुर रसमय भजन का साथ में अवश्य सुन्नुहोला केवल FM अध्यात्म ज्योति। प्रत्येक आइतबार बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म यहाँहरूकै शुभ सन्देश शुभेच्छा र प्रेरक प्रसङ्गका साथमा कार्यक्रम शुभ प्रभात सुन्न सक्नुहुनेछ मात्र FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz। प्रत्येक दिन साँझ 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म सुमधुर भजनहरूको सन्ध्या कार्यक्रम भक्ति सन्ध्या सुन्न सक्नुहुनेछ केवल FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz।

0: एफएम अध्यात्म ज्योति को प्रस्तुति में अहिले यहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम भजनार्पण। यस कार्यक्रम का प्रायोजक
1: जे जे ज्वेलर्स बसंतपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक मुनि।
0: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8
2: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो।
3: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
2: त्यसैले शुद्धता नै खोजौं। जेजे ज्वेलर्स
4: प्रस्तुत छ जेजे ज्वेलर्स। जेजे ज्वेलर्समा छ सुन चाँदी तथा हीरा का आकर्षक डिजाइनहरूको उत्कृष्ट कलेक्शन। सुन चाँदी तथा हीरा जे किन्नुस जेजे ज्वेलर्सकै किन्नुस।
1: जेजे ज्वेलर्स बसन्तपुर न्यू रोड।

0: गोल्ड पैलेस सुप्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मेड या शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनी सूट
4: अनि मलाई

0: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूँ।
1: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो,
2: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
1: त्यसैले शुद्धता नै खोजौ। जेजे ज्वेलर्स प्रस्तुत छ जेजे ज्वेलर्स। जेजे ज्वेलर्समा छ सुन, चाँदी तथा हिराका आकर्षक डिजाइनहरूको उत्कृष्ट कलेक्सन। सुन, चाँदी तथा हिरा जे किन्नुहोस् जेजे ज्वेलर्सकै किन्नुहोस्।
3: जेजे ज्वेलर्स बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैङ्क मुनि। सम्पर्क नम्बर 5320711 9802076888।
1: जे जे ज्वेलर्स शुद्धताको पहिचान।
4: बार्सिलोना

जा, तू खोई है जिसके लिए इस तरह, भूल जाए तुझे इस तरह जिस तरह, भूल जाती है सुबह गई रात को, भूल जाता है पागल कही बात को।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: One 104.8

0: अब आओ आज की ये रात हम यूं ही बसर कर लें। तुम अपना मुंह उधर कर लो, हम अपना मुंह इधर कर लें।
1: अगर गुस्सा ही करना है तो गुस्सा इस कदर कर लो, तुम्हारा मुंह जिधर है पीठ भी अपनी उधर कर लो। हाँ।
2: क्या हुआ?

0: 248. Palace, Suprapath New Road, Kathmandu. Phone number 42-43-736.
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव हरुले मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 मा संपर्क गर्न सक्नुहुनेछ।

0: ऐ मेरी हमरंग, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश न होती तो भी ना आती।

0: एड्रेस सुक्रपत न्यू रोड काठमांडू, फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मेड या शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए,
2: मलाई फ्रॉक,
3: मलाई पनी सूट,
4: अनि मलाई

अबिन अपने सुनत पानी रउआ लोगन के अपन दिल के धड़कन कार्यक्रम फूल झड़ी।

0: गोल्ड पैलेस सुप्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

0: मन शांति आराधना र उपहारका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिने कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती नेपालको पहिलो ISO सर्टिफाइड अगरबत्ती कम्पनी
1: कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती पवित्र सुवास
2: अभी आपने सुना था नहीं रोवा लोगों के अपन रेडियो स्टेशन FM अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ट्ज
3: अभिन अपने सुनत पानी रउआ लोगन के अपन दिल के धड़कन कार्यक्रम फूल झड़ी।

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736। सिल्वर स्टेट सबै भन्दा पुरानो चांदी को एकमात्र शोरूम
1: सिल्वर स्टेट यहाँहरुको सेवामा निरन्तर लागिरहेका छौं विगत 2 दशक देखि। त्यसैले त हामी गर्व गर्छौ किनकि हामीले यहाँहरुको विश्वास जित्न सफल भएका छौं।
0: सिल्वर स्टेट अत्याधुनिक प्रविधिबाट आफ्नै कारखानामा निर्मित बिना रसायनका पूजा सामग्री विवाह लगायत अन्य शुभ कार्यका लागि चाहिने यहाँले चाहे बमोजिमका चाँदीका हरेक प्रकारका सामग्री लगायत गिफ्ट आइटमहरुका लागि
1: सिल्वर स्टेट एउटै छानामुनि चाँदीका सबै सामानहरु।
0: सिल्वर स्टेट धर्मपथ न्यू रोड काठमाडौँ शाखा शुक्रपथ विशाल बजारको अगाडि फोन नम्बर 4227345423355।
2: अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूछ।
3: अभी आपने सुना था रउआ लोगिन के अपन रेडियो स्टेशन FM अध्यात्म ज्योति 104.8 में रहो।
4: अभिन अपने सुनत पानी रउआ लोगन के अपन दिल के धड़कन कार्यक्रम फूल झड़ी

0: सुप्रपथ न्यू रोड काठमांडू, फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820, मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सकूने।

अरे तो लो भैया, हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल। दबा लेगा दांतों तले उंगलियां,

0: गोल्ड पैलेस सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 मा संपर्क करना सक्नुहुने छ।
2: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो।
3: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
2: त्यसैले शुद्धता नै खोजौं। जेजे ज्वेलर्स प्रस्तुत छ जेजे ज्वेलर्स। जेजे ज्वेलर्समा छ सुन, चाँदी तथा हिराका आकर्षक डिजाइनहरूको उत्कृष्ट कलेक्शन। सुन, चाँदी तथा हिरा जे किन्नुहोस् जेजे ज्वेलर्सकै किन्नुहोस्।
4: जेजे ज्वेलर्स बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक मुनि।
5: सम्पर्क नम्बर 5320411 98026788।
2: जे जे ज्वेलर्स शुद्धताको पहिचान।

0: पैलेस सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820, मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: FM AJ 104.8 MHz.

0: Weekend Classic Radio Show.
1: वीकेंड क्लासिक रेडियो शो शुरू हो चुका है। मैं हूं रुचि आपके साथ, और एक बार फिर से कुछ पुराने आर्टिस्ट की जिंदगी के नए किस्से और कहानियां आपके सामने लेकर के आई हूं, साथ ही सुपर हिट गाने भी लेकर आई हूं। आज एक नया दिन है, और आज की मेरी प्लेलिस्ट बॉलीवुड के उन एक्टर्स के नाम है जिन्होंने एक्टिंग के साथ साथ डांसिंग में भी पॉपुलैरिटी कमाई है, जिनका खुद का एक अलग डांस स्टाइल बन गया था। वैसे बॉलीवुड लैविश सेट्स, एक्सोटिक लोकेशंस, बोल्ड और ग्लैमरस हीरोइंस के अलावा सबसे ज्यादा अपने गानों और डांस के लिए ही जाना जाता है। और अपने बॉलीवुड में ऐसे कई एक्टर्स हैं जिनके डांस मूव्स पर आज भी पूरा इंडिया ग्रूव करता है, जिनके डांस स्टाइल को आज भी कॉपी किया जाता है। और बॉलीवुड डांसिंग स्टार्स की बात की जाए तो माधुरी दीक्षित का नाम ना आए, उनकी अदाएं, उनके एक्सप्रेशंस हमारे दिमाग में ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। तेजाब फिल्म के गाने 1, 2, 3 के साथ में इन्हें सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली, और इसी गाने के साथ में सरोज जी और माधुरी के बीच में गुरु शिष्य की ये जो कहानी थी, ये जो जोड़ी थी, वो बन गई। दोनों ने चोली के पीछे क्या है, धक धक जैसे और भी कई सुपरहिट कल्ट डांस नंबर्स दिए हैं, जिसके कारण माधुरी जी को डांसिंग दीवा का खिताब मिल गया। वैसे माधुरी जी वेटरन कोरियोग्राफर सरोज खान जी को अपना गुरु मानती हैं, और आज भी जब भी वो उनके सामने आए पहले उनके पैर पड़ती हैं। माधुरी दीक्षित वैसे एक ट्रेन डांसर थी, उन्हें बॉलीवुड स्टाइल ऑफ डांसिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो जो भी ट्रेनिंग दी वो सरोज जी ने ही दी। काफी कम लोग जानते हैं कि सरोज जी ने जो अवार्ड विनिंग सॉन्ग 1, 2, 3 था, उसे सिर्फ 20 मिनट में ही कोरियोग्राफ कर लिया था। ऐसे एक और गाना था जिसकी शूट के पहले पूरा के पूरा डांस अलोंग विद एक्सप्रेशंस माधुरी दीक्षित ने सरोज जी से करवाया था, जिससे कि माधुरी हू-ब-हू वही एक्सप्रेशंस को भी कॉपी कर सके। और वो गाना था सैलाब फिल्म का गाना हमको आजकल है। तो चलिए वही गाना जिसे सरोज जी को फिल्म फेयर बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड मिला था सुनाती हूँ आपको, अनुपमा देशपांडे जी की आवाज में। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो।

Sul. वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, और आज के सभी गाने जो मैं आपको सुना रही हूँ वो हमारे बॉलीवुड के सुपरहिट डांसिंग स्टार्स के गाने हैं। आई होप आपको आज की प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है। अर्ली 80s की बात की जाए तो वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर्स अगर कोई थे तो वो ऋषि कपूर जी थे। एक क्यूट लवर बॉय से लेकर अपने डांसिंग स्किल्स, इन सभी का इस्तेमाल करके ये सबके दिलों के राजकुमार तो बन ही चुके थे। उनकी डांसिंग, जिसमें ज्यादातर जंपिंग, बाउंसिंग और जॉगिंग हुआ करता था, उसका हर कोई फैन हो गया था। ऋषि जी खुद कहते हैं एक इंटरव्यू में कि मैं तो पागलपना किया करता था, न जाने लोगों को ये डांस कैसे लगता था। ऐसे एक इंटरव्यू में ऋषि जी ने यह भी कहा था कि उन्हें अपना एक गाना जो कि बिल्कुल पसंद नहीं था वो था डफली वाले। इनफैक्ट जब बोनी कपूर उनके पास ओम शांति ओम की रिकॉर्डिंग लेकर आए थे तब उसे सुनकर भी ऋषि जी भड़क गए थे और कहा था कि कितना बुरा गाना लेकर आए हो मेरे लिए। काफी कन्विंस करने के बाद वो गाना उन्होंने किया और बताइए कितना बड़ा हिट हुआ। चलिए आइए सुनते हैं अगला गाना उनकी उस फिल्म से जिसके मेडली का हर गाना खूबसूरत है। इस गाने की इंस्पिरेशन फिल्म के डायरेक्टर नासिर हुसैन साहब को लंदन के एक नाइट क्लब के परफॉर्मेंस से मिली थी। हम किसी से कम नहीं फिल्म से अगला गाना आपके लिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर। मैं रुचि आपके साथ।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, और आज हम बॉलीवुड के डांसिंग स्टार्स के बारे में बात कर रहे हैं। मैं हूं रुचि आपके साथ, और गोल्डन एरा के पॉपुलर डांसिंग स्टार्स के बारे में अगर हम बात करें तो हेलेन जी का नाम तो सबसे ऊपर आता है। हेलेन जी वो स्टार हैं जिन्होंने बॉलीवुड में बेली डांस और कैबरे को इंट्रोड्यूस किया। हेलेन जी ने अपने करियर की शुरुआत की थी एज अ बैकग्राउंड डांसर। 19 साल की थी ये जब उन्हें ब्रेक मिला हावड़ा ब्रिज फिल्म में। वो पॉपुलर गाना था ना, मेरा नाम चिंचिंचू, उसके साथ अपने एक्सीलेंट फुटवर्क और सेक्सी डांस मूव से वो 80s की डांसिंग क्वीन बन गई थी। क्या आपको पता है, प्रोड्यूसर्स मूवी खरीदते ही थे ये पूछ करके कि हेलेन जी का एक डांस नंबर होगा कि नहीं होगा। इनफैक्ट उनके सेंशियस डांस नंबर्स के कारण उन्हें कई बार पब्लिक प्लेसेस में बुरखा पहनकर जाना पड़ता था। काफी कम लोग ये जानते हैं कि हेलेन जी के डांस करियर पर 3 किताबें भी लिखी गई हैं और एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई है। वैसे हेलेन जी के कई गाने आशा जी ने गाए हैं, और हेलेन जी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाया करती थी जब आशा जी ये गाने गाती थी, जिससे कि जिस इमोशन, जिस फील के साथ वो गाना गा रही हैं, उसी इमोशन को वो अपने डांस में भी दिखा सके, बता सके। एक ऐसा गाना जिसके लिए आशा जी को अवार्ड मिला है और हमें हेलेन जी जैसा रिवॉर्ड मिला है, वो गाना आपको सुनाती हूँ मैं, कारवां फिल्म से हेलेन जी का वन ऑफ द मोस्ट सेंशियस सॉन्ग्स एवर, पिया तू अब तो आ जा।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। वैसे डांसिंग हीरो की बात करें तो मिथुन दा को कैसे भूल सकते हैं। उनका डिस्को डांसर सॉन्ग का सिग्नेचर स्टेप आज भी लोगों में पॉपुलर है। अपने डिस्को देसी फ्यूजन स्टाइल के कारण उन्हें बॉलीवुड का बेस्ट डांसिंग हीरो माना जाता है। काफी कम लोग ये जानते हैं कि अपने स्ट्रगलिंग डेज में मिथुन दा हेलेन जी के असिस्टेंट रह चुके हैं, और उन दिनों उन्होंने इतना संघर्ष किया है कि स्टेज पर परफॉर्म करना सिर्फ दो वक्त की रोटी कमाने के लिए हुआ करता था। आज वो इस मुकाम पर हैं कि लोग उन्हें डांसिंग के ग्रैंड मास्टर मानते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि मिथुन दा अच्छे एक्टर और डांसर के साथ साथ एक अच्छे कुक भी हैं। हमेशा वो अपने जन्मदिन पर घर पर पार्टी किया करते हैं और सभी लोग जो आते हैं उनके लिए खुद से खाना बनाते हैं और ट्रीट देते हैं। स्पेशली बिरयानी बड़ी पसंद है उन्हें, तो बिरयानी खाते हैं और उसके बाद डांस करके सभी पचा भी लेते हैं। खैर, आइए सुनते हैं अगला गाना उन्हीं की सुपरहिट फिल्म डिस्को डांसर से। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो, मैं रुचि आपके साथ।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं रुचि आपके साथ और हिंदी सिनेमा के डांसिंग सुपरस्टार्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। और अगर कोई एक ऐसी डांसर है जिन्होंने चाहे कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग ना ली हो लेकिन फिर भी डांसिंग डीवा है, तो वो है हमारी बबली चांदनी यानी कि श्रीदेवी जी। अनट्रेन थी लेकिन फिर भी डांसिंग लेजेंड थी। श्रीदेवी जी वॉज अ मास्टर ऑफ हर आर्ट। उनके परफॉर्मेंसेस ब्रेथ टेकिंग हुआ करते थे। इट्स हार्ड टू बिलीव कि उन्होंने कभी डांस सीखा ही नहीं था। श्रीदेवी जी की भी फेवरेट कोरियोग्राफर माधुरी दीक्षित की तरह सरोज जी ही थी। लेकिन श्रीदेवी जी को हमेशा सरोज जी से एक शिकायत रहती थी। वो कहती थी कि आप माधुरी को मुझसे ज्यादा अच्छा डांस सिखाती हैं। और सरोज जी कहती थी वो इसलिए क्योंकि माधुरी ज्यादा अच्छा सीखती है, मैं जो बोलती हूँ वो बिना कोई सवाल जवाब किए हू कैमरा के सामने परफॉर्म करती है। लेकिन श्रीदेवी, तुम्हारे पास में मेरे हर एक एक स्टेप और हर एक एक एक्सप्रेशन के लिए सवाल होता है। वैसे हमारी श्रीदेवी जी सिर्फ हार्ड वर्किंग ही नहीं बल्कि काफी प्रोफेशनल भी थी। चालबाज फिल्म के गाने किसी के हाथ ना आए कि ये लड़की के दौरान श्री जी को कुछ 103 डिग्री बुखार था, लेकिन फिर भी उन्होंने बारिश में डांस किया था और हमें वन ऑफ द मोस्ट मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंसेस दी। क्या आप जानते हैं 4 साल की उम्र से ही उन्होंने फिल्मी जगत में एंट्री ले ली थी। वैसे वो एक गाना जो उनकी जिंदगी का सबसे आइकॉनिक गाना बन गया, वो गाना यहां पे ना सुनाऊं आपको ऐसा कैसे हो सकता है। चांदनी फिल्म से सुनिए अगला गाना वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर। मैं रुचि आपके साथ।

0: महंगी है।
1: कैसा लगा आपको ये शो? हर हफ्ते हम क्लासिक रेडियो शो का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं, सो डू ट्यून इन एवरी वीक। चलिए तो मैं रुचि यहाँ से विदा लेती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते कुछ ऐसे ही किस्से, कहानियाँ और आपके पसंदीदा गानों के साथ।

6 बजे। अब FM अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज को संध्याकालीन प्रसारण प्रारंभ हुन्छ। FM अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ संध्याकालीन सेवामा शुभ संध्या।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

वसुदेव जी महाराज की जो सात भार्याएं हैं, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी, ये पत्नियां हैं, पुत्र नहीं है। मन में थोड़ी बेचैनी तो होती है कि हमारे घर पुत्र नहीं है, इसलिए वो विवाह करते ही चले गए, शायद इस बार पुत्र हो जाए, इस बार पुत्र हो जाए। जय श्री कृष्ण। और सातवीं पत्नी देवकी जी के पुत्र हुए। देवकी के प्रथम छह पुत्रों को दुष्ट कंस ने मार दिया। महारानी देवकी के सातवां जो पुत्र हुआ वो श्री बलराम हैं। इधर रोहिणी माता को जो प्रथम पुत्र हुआ वो भी बलराम हैं। देवकी माता के यहां अष्टम संतान के रूप में मेरे गोविंद पधारे, पुत्र के रूप में परमात्मा आए। परीक्षित, मथुरा में प्रभु ने अवतार लिया, गोकुल में पलना झूला। सुनो, फिर वृंदावन जाके बड़ी सुंदर पावन लीलाएं की, मथुरा जाकर दुष्टों का संहार किया, कंस का उद्धार किया, द्वारिका जाके सुमधुर पावन लीला की, और प्राच्योद्धवाय च परम समगात स्वधामा। अंत में उद्धव जी को ज्ञानोपदेश करने के बाद मेरे गोविंद अपने धाम को चले गए। अच्छा, पहले प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। एक एक मंत्र में पूरी कृष्ण कथा सुना दी और सुखदेव जी मौन हो गए। अब वहां हजारों संत बैठे थे, हजारों तत्वज्ञ मनीषी बैठे थे, कुछ सदगृहस्थ साधक गण भी बैठे थे, योगी जपी तपी सन्यासी भी थे, और चार दिन से कथा तो बिल्कुल अविश्राम गति से चल रही थी, अबाध गति से चल रही थी, और अब आकर सुखदेव जी ने एक मिनट में कृष्ण कथा सुनाई और चुप हो गए। अब कथा के बीच में बोलना तो मना है, प्रश्न करने का अधिकार तो केवल परीक्षित को ही मिला था। अब बेचारे संत लोग एक दूसरे को देखकर, सुखदेव जी ने कथा कर दी और मौन चुप हो गए। एक ऋषि ने परीक्षित को इशारा किया, हूं पूछो ना क्या हुआ। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से प्रार्थना की, गुरु जी हो गई कृष्ण कथा? सुखदेव जी बोले, अभी सुना तो दी, मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में ये किया, वृंदावन ये किया, द्वारिका ये किए, फिर मथुरा ये किए और चले गए। यानी कि हो गई कृष्ण कथा? बोले सुना तो दिया। अभी परीक्षित की आंखों में आंसू आ गए, करुणार्द हो गए परीक्षित। बोले गुरुजी आप क्या कहते हैं? वो सूर्य वंश कृष्ण चंद्र वंश आपने सुनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन जिस कृष्ण कथा को विस्तार से सुनने के लिए मैंने सारी कथाएं संक्षिप्त सुनी, वो कृष्ण कथा आपने और संक्षिप्त कर दी, मुझे अजीब लगा, अटपटा लगा, और अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगा। सुनाओ ना महाराज, कि गोविंद के साथ में तो मेरा बहुत संबंध है।

बड़ी समझने की बात। मेरे बाबा पांडव पांच थे, सेना उनके पास थी सात अक्षौहिणी। कौरवों की सेना तो एक सागर थी गुरुजी, और कौरवों की ग्यारह अक्षौहिणी सेना रूपी सागर में बड़ी बड़ी तिनगिल मछलियां थी। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य बड़े बड़े दिग्गज अतिरथी वीर, लेकिन मेरे बाबा पांडवों ने श्री कृष्ण के चरण रूपी नौका का जब आश्रय ले लिया तो कौरवों के सेना रूपी सागर को ऐसे पार कर गए गुरुदेव जैसे गाय के बछड़े का जो खुर का गड्ढा होता है ना उसको कोई पार कर ले। वत्स पदम स्म यत् प्लवाह, जो प्रभु मेरे बाबा पांडवों के रक्षक, उनकी कथा संक्षिप्त सुनू ये नहीं हो सकता। बाबा की बात छोड़िए, मैं तो अपनी बात कहते हैं कि द्रोण्यस्त्र विप्लुष्टमिदम्।

कौरव और पांडवों के वंश को आगे चलाने का बीज बचा था मैं, और 9 मास पूर्ण कर रहा था मातृ गर्भ में, तो अश्वत्थामा जी ने मुझे गर्भ में ही नष्ट करने का प्रयास किया, ब्रह्मास्त्र चलाया। हमारी मातोश्री रोती रोती गोविंद की शरण में जब आई तो प्रभु ने सूक्ष्म रूप लिया और मातृ गर्भ में प्रकट हो गए, मेरी प्राण रक्षा कर दी। अच्छा, यहां परीक्षित बोलते हैं जगोप कुक्षिम गत आत्त चक्रो, जबकि आपने पहले दिन कथा में सुना था कि भगवान ने परीक्षित को गर्भ में जाकर कैसे बचाया, बोले अपनी गदा घुमाई। प्रभु ने अपनी गदा को परीक्षित के चारों तरफ घुमाया और उनकी प्राण रक्षा कर दी। और यहां परीक्षित सुखदेव जी महाराज से कह रहे हैं कि मुझे मारने को ब्रह्मास्त्र जब चलाया तो गोविंद गर्भ में प्रवेश कर गए और अपने सुदर्शन चक्र से उन्होंने मुझे बचाया। ये तो गड़बड़ हो गया ना। भगवान जब बचाने गए तब सुखदेव जी ऋषि सूत जी बता रहे हैं कि प्रभु ने अपनी गदा से परीक्षित को बचाया। और यहां परीक्षित जो गवाह है, बिल्कुल दृष्टा देखने वाला, वो कह रहा है मुझे भगवान ने सुदर्शन चक्र से बचाया। गत आप्त चक्रो, ये तो तकलीफ हो जाएगी, एक ही बात को दो रूप में कैसे कहें। तो भागवत के टीकाकारों ने बड़ा सुंदर इसका भाव प्रस्तुत किया है, कहते नहीं, भगवान ने अपनी गदा से ही परीक्षित को बचाया था, पर गोविंद ने परीक्षित की रक्षा में अपनी गदा इतनी तीव्र गति से चारों तरफ घुमाई कि नन्हे परीक्षित को वो गदा ही चक्र के रूप में दिखाई दी होगी, बोलो जय श्री कृष्ण, लेकिन वो गदा ही थी, चक्र नहीं था। तो परीक्षित कहते हैं जगोप कुक्षिम गत आत्त चक्रो, प्रभु ने सुदर्शन चक्र से मुझे बचाया। उनकी कथा में संक्षिप्त कैसे सुन सकता हूं, आप सविस्तार बताएं महाराज। आपने रोहिणी नंदन बलराम जी का नाम बताया और देवकी माता के सातवें पुत्र में भी आपने बलराम का ही नाम लिया। तो प्रभु जी देवक्याम गर्भ संबंध कुतो देहांतरम बिना, एक ही व्यक्ति बिना दो बार जन्म लिए दो माताओं का पुत्र कैसे हो सकता है, आप जरा स्पष्ट कर दें, बताओ ना विस्तार से गुरु जी। राजा परीक्षित ने जब यह प्रश्न किया तो भगवान सुखदेव के नेत्रों में अश्रु छलक आए, उनका हृदय गदगद हो गया, मन में सोचने लगे मैंने श्रोता बहुत देखे पर ऐसा श्रोता नहीं देखा है। हम लोग तो 3 घंटा सवेरे और 3 घंटे शाम को सुनते हैं कथा, तो 3 घंटे में पैर भी कई बार बदल लेते हैं, कई भक्त तो बेचारे जलपान भी कर लेते हैं, कई चाय की चुस्की भी बीच में ही लगाए आते हैं, कई लोग तो सेल फोन पर मार्केटिंग भी कर लेते हैं, शेयर मार्केट का भाव क्या है, 3 ही घंटे में होता सब काम, और भी कोई छोटा बड़ा काम हो तो वो भी। लेकिन परीक्षित 4 दिन से कथा सुन रहे हैं और एक बार भी मैंने इनके चेहरे पर आलस्य नहीं देखा, एक बार भी इसने आसन नहीं बदला, एक बार भी पानी नहीं पिया, और मैंने थोड़ा शॉर्ट में कर दी एक कथा तो कहता विस्तार से कहो भैया, श्रोता बहुत देखे। भगवान सुखदेव जी मुस्कुराकर के बोले राजन, इतने दिन से आप कथा सुन रहे हैं, आपको भूख प्यास लगी होगी, क्योंकि आपके पीछे जो संत लोग बैठे हैं ना, ये सब तो महान मनीषी हैं, कुछ ना मिले ना 10-5 दिन तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने तो ऐसे हैं कि कई कई वर्ष बीत जाए बिना पानी पिए, पर आपको तो ये सब अभ्यास नहीं है। मैं ऐसा है कृष्ण कथा आपको सुनाऊंगा, अभी 5 मिनट का मैं थोड़ा विश्राम देता हूं, आप जलपान कर लो, भूख प्यास लगी होगी। राजा ने बहुत सुंदर जवाब दिया है।

सहदेव जी कहते हैं मुझे परीक्षित का मुझे भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती भगवान, क्योंकि पिबंतम तुन मुखाम बोजक श्रुतम हरि कथामृतम। परमात्मा की परम पावन कथा आप सुना रहे हैं, आपके मुख रूपी चंद्रमा से भगवान की अमृतमयी कथा बरस रही है और मैं कानों के माध्यम से उसको पी रहा हूं। किसी को रसगुल्ला खाने को मिले तो कोई और चीज खाकर मुंह चिपकना क्यों करे, किसी को अमृत पीने को मिले तो कोई गंदा जल क्यों पिए। आप तो मुझे विस्तार से कहें भगवान। सुखदेव प्रभु के मन में यह भाव जगा, अरे राजन तुम्हारे जैसा श्रोता मुझे मिल जावे तो मैं 7 दिन क्या 7 महीना नॉन स्टॉप सुनाता रहूं। बोलो जय श्री कृष्ण। ये सत्संग में रुचि का होना संत कृपा और भगवंत कृपा दोनों का प्रत्यक्ष रूप है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। यहां से पहले जो मैं कथा कर रहा था ना, अभी हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल में कथा थी 7 तारीख से 13 तारीख तक, वहां से कुछ लोग सुनने भी आए कथा। तो वहां कथा का समय था 10 बजे से 4 बजे तक, बीच में थोड़ी देर विश्राम होता, पर वहां श्रोता आते थे कथा सुनने सवेरे 7 बजे। मैंने देखा ये श्रोता 7 बजे से श्रोताओं का आगमन शुरू हो जाता कथा के लिए, कथा शुरू होनी है 10 बजे से 4 बजे तक, बीच में आधा पौना घंटे का विश्राम। मैंने पूछा इतना जल्दी क्यों आ जाते हैं, तो बताए महाराज यहां संतों का समागम इस तिथि में होता है प्रतिवर्ष। लोगों को ऐसी आदत पड़ गई है कि जितने भी लोग हैं वो 10 दिन की छुट्टी ले लेते हैं पहले से, और प्रातः 7 बजे से ही आ जाते हैं, इधर थोड़ी सेवा भी करते हैं और इधर ही फिर भंडारा लंगर प्रसाद लेते हैं, शाम को कथा सुन के रात्रि में कीर्तन करते हैं, सवेरे से फिर कथा शुरू। कथा के प्रति रुचि का होना ये गोविंद की कृपा के बिना संभव नहीं है। बिल्कुल सही बात है, राजर्षि परीक्षित ने 7 दिन आसन नहीं बदला था, जलपान करना तो दूसरी बात है, ऐसी उनकी मनस्थिति। सुखदेव जी कहते हैं धर्म की जब हानि होती है, पापाचार अनाचार जब बढ़ने लग जाता है, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। मेरे गोविंद अनंत रूप लेकर के आते हैं, किसी भी रूप में आ जाते हैं, गाय का रूप लेकर के पृथ्वी देवताओं के साथ में ब्रह्मा के पास गई, ब्रह्मा बोले क्या हुआ, बोले मैं रसातल में जाने वाली हूं, पाप बढ़ रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है। ब्रह्मा ने कहा बेटी तुम 2 मिनट रुको, मैं जरा भगवान से बातें तो कर लूं। ब्रह्मा ने आंखें बंद करी और मन की डोर गोविंद के चरणों तक पहुंचाई और 1 मिनट मौन रहकर दूसरे ही मिनट आंखें खोल दी। पृथ्वी बोली क्या हुआ, बोले मेरी बात हो गई, मेरी वार्ता हो गई। क्या कहा प्रभु ने, बोले वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष पर। मेरे पुराण पुरुषोत्तम जो परात्पर श्रीमन नारायण हैं, वो मथुरा में वसुदेव जी के घर पुत्र बनकर आएंगे, ऐसे मेरे हृदय आकाश में आकाशवाणी हुई है। हाँ, गिरम समाधव गगने समीरिताम निशम्य वेधास्त्रिसानुवाच। और भगवान की जो माया है ना, विष्णु और माया भगवती जजा सम्मोहितम जगत, वो भगवती माया मालूम है, माया भी यशोदा के यहां गोकुल में पुत्री बनकर आएगी। भैया हम लोग भी सावधान हो जाएं, हम सब देवता क्या करें मालूम, कोई भगवान के बेटियां बन के चले, कोई नाती पोते बनकर चले, कोई भगवान के दरबान बन जाए, ऐसे प्रभु की सेवा में सबको सहयोगी बनना है। ब्रह्मा ने आदेश कर दिया और चले गए। शत्रुघ्न जी के द्वारा बसाई गई जो मधुपुरी मथुरा है, कालांतर में इस मथुरा में एक बड़े धर्मावलंबी राजा हुए, नाम था उग्रसेन, बहुत धर्मात्मा है, ब्राह्मणों का सत्कार करते, संतों का आदर करते, ये उनकी मनस्थिति। पुत्र नहीं था, मन में थोड़ी चिंता है, मथुरा की बगल में ही गांव है ना सौरी बटेश्वर की बगल में,
वहां का राज्य मिला था मथुरावासी सूरसेन जी को। सौरी गांव है, आज भी है सौरी, सौरी गांव। वहां के राजा थे सूरसेन, मूलतः तो मथुरा नगरी के ही थे पर राज्य उनको वहां का मिला था। उग्रसेन जी ने यज्ञ किया, पत्नी गर्भवती हुई और वे जब वन में गई सहेलियों के साथ में, वहां सुनो एक राक्षस रहता द्रुमिल, द्रुमिल राक्षस ने उनकी पत्नी को देखा, उसके उसकी छाया गर्भस्थ शिशु पर पड़ी तो कंस प्रकट हो गए। ब्राह्मणों ने विरोध किया, ये बालक तो बड़ा भारी महाराज राजद्रोही होगा, धर्म के विरुद्ध आचरण करेगा। उग्रसेन बोले नहीं नहीं ऐसा पुत्र मुझे नहीं चाहिए। लता पत्रों में लपेट कर उसको यमुना में प्रवाहित कर दिया। वसुदेव के पिता सूरसेन जी यमुना में भजन कर रहे थे, उन्होंने बच्चे को लिया पाला और घर पे लाए। नारद जी से ज्ञात हुआ कि मैं उग्रसेन का पुत्र हूं, वन में चला गया, बड़ी तपस्या की। शंकर बोले क्या चाहिए? बोले ये वर दे दो कि मैं मरूं कभी नहीं। शंकर जी बोले ऐसा वरदान देना हमने बंद कर दिया है, पहले बहुत दे दिया, तुम लोग हमसे ही वरदान लेते हो, हम कोई तकलीफ देते हो समझे, अब नहीं फंसेंगे, हमको देवताओं ने समझा दिया है। शिव जी बड़े भोले हैं ना, आसु शीघ्रम तुष्यति थी आसुतोष, बड़ी जल्दी खुश होते हैं। बेलपत्र चढ़ा दो तो भी खुश, हेडपंप का पानी चढ़ा दो तो भी खुश, तीन पत्ते का बेलपत्र चढ़ा दो, चिनिया बादाम चढ़ा दो, घंटा चुरा के भाग जाओ। एक चोर ने देखा शिवजी के मंदिर पे 10 किलो सोने का घंटा है, हा आ गया। बोले छोटे मोटे कुंडल फुंडल बहुत चुराए, ये सोने की घंटी मिल जाए इतनी छोटी चोरी बंद। ताला वाला तोड़ के मंदिर में घुस गया भीतर, लेकिन वो घंटी ऊंची थी, हाथ पहुंचता नहीं। आपने देखा हो किसी किसी मंदिर में शिवजी महाराज की पिंडी बड़ी ऊंची होती है, कोई कोई शंकर बड़े ऊंचे होते हैं। हाँ गुवाहाटी में तो ऐसे शिवजी हैं कि उनको लोग ऐसे करें तो जेट में ही नहीं आते, बड़े मोटे और बड़े ऊंचे हैं। अब चोर ने सोचा इस पर ऊपर चढ़ जाऊं तो घंटी हाथ में आ जाएगी, तो शिवजी के ऊपर चढ़ गए और शिवजी पर चढ़कर जैसे ही घंटी उतारने लगा सोने वाली, तो शंकर जी प्रकट हो गए, त्रिशूल लेकर के भगवान शिव प्रकट हो गए। बोले बास बास बास भगत वरदान मांगो, क्या चाहिए क्या चाहिए, मैं बहुत खुश हूं। चोर घबराए बाबा मैं कोई भगत भगत नहीं हूं महाराज, मैं तो चोर हूं, ये घंटी चुराने आया था। शंकर जी बोले फालतू बात नहीं करते, कोई तीन पत्ते का बेलपत्र चढ़ा के ही पूजा मान लेते हैं, कोई एक लोटा हेडपंप का पानी चढ़ा के चलते बनते हैं, तुम कितने ऊंचे भगत हो, पूरा शरीर ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया, तू तो मांग ले हम दे देंगे। बताओ इतना दयालु दुनिया में कोई है? आज शिव चतुर्दशी है, लगने वाली है। भगवान शंकर परम करुणाशील हैं और कई बार तो वरदान ये देते हैं भगतना देवताओं को पड़ता है, ये तो देख के चल दी। देवता कहते हैं बाबा सोच तो लिया करो, बोल भैया अपन आगे दे सोचते हैं ना पीछे सोचते हैं, जिसने हमसे कुछ कहा प्रेम से बस अपन तो देते ही बनते हैं। शंकर जी बोले अब नहीं करते, अपने ऐसी गलती देवताओं ने समझा दिया। तो बोले महाराज मेरी प्रतिज्ञा तो बेकार चली जाएगी। नहीं नहीं बेकार क्यों जाएगी, हम बोलते हैं ना तुम भगवान के हाथों से मरोगे, मनुष्य के हाथ से नहीं मरोगे, बस अब तो अजरमर हो गए ना, लेकिन मुझे मारने वाला भगवान है कि मनुष्य, पता कैसे चले। शिव जी बोले धनुष ले जाओ, इस धनुष को नारायण के अलावा कोई तोड़ नहीं सकता, जो धनुष तोड़ेगा वो तुमको छोड़ नहीं सकता। कंस ने आकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी महाराज, अकासुर बकासुर व्योमासुर अरिष्टासुर केसी धैनुकासुर बड़ी भारी सेना एकत्रित कर ली, पूतना जी भी थी उसमें, आकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी। यज्ञ चल रहा था, यज्ञ विध्वंस कर दिया, ब्राह्मणों का अपमान कर दिया, संतों का अपराध कर दिया। सब दौड़े दौड़े आए,
महाराज कंस आ गया, उस ऐसे उग्रसेन ने बुलाया, सुनो तुमने विप्रों का अपराध किया, चलो कोई बात नहीं, तुम आ गए, तुम्हारा ही घर है, आपत्ति नहीं, पर इनसे क्षमा मांगो। कंस ने कहा इनसे क्षमा मांगो? पिताजी सुनिए, पिताजी बोले क्या है? बोले चलिए, जेल में डालकर डबल ताला लगा दिया। चाचा जी बोले क्या कर रहे हो? बोले आप भी चलिए, उनको पकड़ के डबल ताला फिर लगा दिया। चाचा जी और पिताजी दोनों जेल में बंद, और जितने उनके अनुयायी थे धर्मात्मा सबको दूसरे जेल में डाल दिया। अपना सेनापति, अपना महामंत्री, अपना सब कुछ एकाधिकार कर लिया, ढिंडोरा पीट दिया। कोई यज्ञ नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, जो कुछ हूं केवल मैं हूं। यज्ञ करना है कंसाय स्वाहा बोलो, अनुष्ठान करना है कंस महायज्ञ करो। बेचारे लोग क्या करें, माला जपते हैं छुप करके। त्राही त्राही मच गई पूरी मथुरा में, पूरे इस प्रदेश में। एक बात कहूं, कोई कितना ही बड़ा दुष्ट हो, आखिर दिल तो सबको होता है। ये बड़े बड़े दुरात्मा जीवों के मन में भी कभी कभी करुणा जगती है। आज कंस जब महल में जा रहे थे स्वस्थ मन से, तो उसने महल में प्रवेश करते ही एक परम सुंदरी युवती को बैठे देखा, आंखों में आंसू थे। महामंत्री ने पूछा आप जैसा कठोर दिल आंसू? बोले सामने जो बैठी है ना, जानते हो कौन है? ये मेरी लाडली छोटी बहन देवकी है, मेरे चाचा जी की बेटी, देवक महाराज की पुत्री। इतना डरती है मंत्री जी हमसे, ये मेरे सामने कभी आती नहीं। इसको लगता है कि ब्रह्मा ने दुनिया में बुरे लोग जो बनाए, उसमें सबसे ज्यादा बुरा मेरे भैया कंस को बनाया, क्योंकि कहती है मेरे पिताजी और ताऊजी दोनों को कंस ने जेल में डाल दिया। पर महामंत्री

वसुदेव देवकी को विदा करने जा रहा है, स्वयं रथ को चला रहा है। एक बात बताऊं, देवताओं का और माताओं का स्वभाव एक जैसा होता है। हमारी बहनें भी मन में किसी बात को छुपा नहीं पाती तो देवता भी छुपा सकते नहीं। हाँ, एक जैसी प्रवृत्ति है, इसलिए देवता भी इनको प्रणाम करते हैं। अब देवता थोड़े चुप रहे आते तो क्या बिगड़ जाता, लेकिन बोल गए।

देवता कहते हैं, अरे कंस जिस बहन देवकियों को विदा करने जा रहा है इसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, आठवीं बेटी काल होगी नहीं कहा, बेटा काल होगा नहीं कहा, अस्यास्ताम अष्टमो गर्भ हो, इसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। और शरीर को आत्मा मानने की गलती जो करते हैं ना, वो अपने शरीर की सुरक्षा के लिए बड़े से बड़ा कुत्सित कार्य भी हंस के कर लेते हैं। दो मिनट पहले जिसके प्रति पुत्री जैसा भाव है, उसी बहन के सिर के केस पकड़कर नीचे खींच लिया और मन में सोचा मेरे काल को जन्म देने वाली देवकी को जिंदा ही ना छोड़ूंगा, तो काल पैदा कहां से होगा। तलवार लेकर मारने दौड़ा, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ा और कुछ पंक्तियां बड़ी सुंदर कही हैं वसुदेव ने, सुनने लायक है।

आप जैसा मनीषी, आप जैसा विद्वान, आप जैसा महान अतिरथी वीर अबला नारी पर तलवार से वार करे शोभा नहीं देता है। क्योंकि नारी तो अवध्या है, नारी तो पूजनीय है, उसमें भी छोटी बहन जिसका कन्यादान अपने हाथों से किया, जिसके हाथ में कलावा बंधा है विवाह का, आप जैसा वीर उसको मारे ये शोभा नहीं देता, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कंस ने कहा आपने सुना नहीं इसका, पुत्र मेरा काल होगा, तो वसुदेव जी बोले काल से बचोगे कहां,

राजन, जन्म जिसने लिया है तो हमारे साथ में हमारी मौत भी जन्म लेती है। और अद्यवाब्ध सतान तेरवा मृत्यु वही प्राणनम ध्रुव, आज कल परसों हजार वर्ष बाद भी मरना तो सबको पड़ेगा। प्रश्न जीने का नहीं है, प्रश्न मरने का नहीं है, प्रश्न यह है कि जितने दिन अपन जीते हैं उतने दिन करते क्या है। आज इस राष्ट्र की दुर्गति का मूल कारण यदि कोई है तो केवल यही है कि हमने जन्म तिथि और मरण तिथि को याद कर लिया, बीच वाला सब भूल गए। जन्म तिथि पर गए फोटोग्राफर लेके, माला चढ़ाई, फूल चढ़ाया, चले आए। मरण तिथि आई तो फूल चढ़ाया, ये दो मिनट मौन बैठ गए, चले आए। लेकिन जिसको फूल माला हमने चढ़ाई है, पुष्प अर्पित किए हैं, उस महापुरुष ने जीवन में किया क्या, वो एक प्रतिशत भी अपने जीवन में हम नहीं उतारते। वास्तविक श्रद्धांजलि तो तभी होती है जब उस महापुरुष के आदर्श को हम अपने जीवन का आदर्श बनाए, जो हम नहीं करते। स्वामी विवेकानंद जी महाराज का कौन सी तिथि में जन्म हुआ, किस तिथि में उनका ब्रह्मलीन हो गए, ये भारत के अधिकांश लोग नहीं जानते, क्योंकि जरूरी भी नहीं है। लेकिन उन्होंने जीवन में आध्यात्मिक चेतना कैसे जगाई लोगों में, पूरे विश्व में राष्ट्रगुरु के रूप में भारत को पुनः प्रतिष्ठित कैसे करने का प्रयास किया, ये दुनिया जानती है। आध्यात्मिक

में कैसी क्रांति की श्री विवेकानंद जी महाराज ने, उसको लोग याद करते हैं। तुम्हारे चरित्र पर कलंक लग जाएगा, हां बड़ा वीर बनता था, बहन को मार दिया, फिर तुम्हें देवकी से कोई भय नहीं है, तुम्हें देवकी के पुत्रों से ही तो भय है। नहस्यास्ते भयम सौम्य यदभागाह शरीरिणी पुत्रान समर्पयस्यस्या यतस्ते भयमुत्थितम्। देवकी के गर्भ से जितने पुत्र जन्म लेंगे मैं सब तुमको जन्म लेते ही देता जाऊंगा, पर इसको छोड़ दो। वसुदेव ने सोचा इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता है देवकी को बचाना, जो बोला सब हां करता गया। आठ बेटा नहीं हो जाए जेल में रहना पड़ेगा, मंजूर है सब। और महारानी देवकी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम है कीर्तिमान। कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसाया अनुकुदुंद भी, कंस ने उसको मार दिया। गर्ग संहिता आदि में तो कुछ संकेत मिलता है कि एक बार तो कंस ने छोड़ दिया था, पर नारद जी ने एक से आठ और आठ से एक सब एक ही बता दिया तो उसने मार दिया। फिर दूसरा बालक भी मार दिया, तीसरा भी मार दिया, चौथा पांचवा छठवां भी मार दिया। अब देवकी माता के गर्भ में सातवां बालक आ रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। पर प्रभु ने योग माया को बुलाया और कहा देवी देवकी के गर्भ में जो सातवां बालक है वो मेरे शेष जी हैं। राम अवतार में जो छोटे भाई लक्ष्मण जी थे ना, वही कृष्ण अवतार में बड़े भाई बलराम बन गए।

स्वामी हरिदास महाराज की जय, बोले वृंदावन धाम की जय, यमुना महारानी की जय, शिखराज महाराज की जय, श्री हिरण्यवंश महाप्रभु जी की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, भगवत देव रसिक जी।